संस्कृत शब्द अपने आप में बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है। जाने माने बौद्ध विद्वान भदंत आनंद कौशल्यायन ने संस्कृति के साथ सभ्यता शब्द को जोड़ते हुए अपने एक निबंध में लिखा है कि ये दोनों ही शब्द सरल हैं, लेकिन इनके अर्थ बहुत गंभीर हैं। वे लिखते हैं कि बहुत सारे लोग संस्कृति और सभ्यता शब्दों का खूब प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्हें इनके सही अर्थों का पता नहीं होता। भदंत आनंद कौशल्यायन ने बहुत ही सरल शब्दों में संस्कृति का अर्थ बताया है। उनका कहना है कि संसार के सभी जीवधारियों के बीच मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसके पास सोचने समझने और विचार करने की शक्ति है। मनुष्य के इसी गुण के कारण वह अन्य जीवों से श्रेष्ठ है। मनुष्य के लिए केवल भोजन करना और जीवन जीने के लिए दूसरे काम करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। वह समूह बनाकर रहता है, अपने साथ ही परिवार और समाज के लिए काम करता है। उसके पास सोचने विचारने की ताकत होती है, उसके अंदर समझदारी होती है। आपस में प्रेम के साथ रहना, दूसरों की भलाई के लिए काम करना, सहयोग की भावना रखना, नैतिकता और मर्यादा का पालन करना आदि गुण मनुष्य के अंदर ही होते हैं। संस्कृति का अर्थ सम्यक्कृति होता है। भली भांति अच्छे तरीके से किए गए काम संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। संस्कृति शब्द का शाब्दिक अर्थ सुधरी हुई स्थिति होता है। मनुष्य अन्य जीवधारियों से अलग यदि है तो वह संस्कृति के कारण है। यहाँ संस्कृति की बात केवल पहनावा, खान पान की आदतों और रहन सहन के तरीकों से जुड़ी हुई है, लेकिन इससे कहीं अधिक संस्कृति का पक्ष विचारों में दिखता है। मनुष्य ने भौतिक और सांसारिक सुखों के अनेक साधनों का विस्तार किया है। उसके लिए जीवन को सरल, सुखद और सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे भौतिक साधन उपलब्ध हैं। गाड़ियाँ, बंगले, अच्छा खान पान, सुंदर कपड़े और सोने चांदी के गहने, आभूषण आदि उपलब्ध हैं। लेकिन विचार करें कि यदि मनुष्य अपने विचारों से अच्छा नहीं है तो क्या ये सारी चीज़ें लाभकारी या सुंदर हो सकती हैं? अधिकतर लोगों के लिए इसका उत्तर नहीं में ही होगा। व्यक्ति के लिए ये भले ही उसको भौतिक सुख देने वाली हों, लेकिन समाज के लिए इनका कोई उपयोग या लाभ नहीं हो सकता। यह भौतिक संसाधन केवल समाज में विभेद की गहरी खाई पैदा करेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होए, कहकर कबीरदास जिस करनी की बात कहते हैं उसमें संस्कृति का पक्ष भी जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति के काम, उसके विचार और उसका व्यवहार उस व्यक्ति की संस्कृति को दिखाता है। व्यक्ति की संस्कृति के माध्यम से उसके समाज की संस्कृति दिखाई देती है। संस्कृति की श्रेष्ठता विचारों की श्रेष्ठता से बनती है। लोगों के लिए मन में अच्छे भाव रखना, सामंजस्य के साथ रहने की भावना रखना, मिलनसार और सरल स्वभाव का होना संस्कृति के विशेष गुणों को दिखाता है।

अभी आप डॉक्टर राहुल मिश्रा से रोशनी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी लेह से बोल रहे हैं। आज आकाशवाणी लेने जुंजिकताइन कस्ता आज दिरिंगे में डिग्रिम गुनिस्कोर गुन सनाजात इना डिग्रिम तांग पेना दक्षा छे चोत अर्दुन तांग स्कर्मा जिप चुजाक निसी का तत्पना जिन डिग्रिम संचेस लापुलिन इना आ नम गेल्टा शी तांग ठोपा ने फुलकाने सुंगूर अबीदा खानू में फुलकाने नात कवाली तांग चिरिंग नोरजम तांग लोबजांडोल में फुलकाने छोसलू सनाजात चुचो त्रियादिका आकाशवाणी दिल्ली ने समाचार प्रभात तंग हरियत तंग स्कर्मा चौंक का मॉर्निंग न्यूज सनासत गतो चुचो त्रियत तंग पेदिका टाशी तारगेस तंग टोपा ने सलका ने जुंगलुरिक संचेस लफुलिन यंग लदाख सना नस्सुल गतो चुचो त्रुगुई का सनाजात चुचो त्रुगुतंग स्कर्मा स्ट्री का तुंडुप दर्जे तंग सवा फुंचो हसर कने लुरिक सांचेस लफुलिन फिल्म लुगुने डिग्रम गदो छ चतुगु तंग फेदिका सनाजत गदो छ चो चुनी निमे छ चो चुकनि सुपा आकाशवाणी दिल्ली ने एफएम गोल्ड दिल्ली डिग्रम गुन सांचेस लफुलिन निमे छ चो चुकनि सिका फिल्म लुरिक सनाजत छ चो चुकनि तंग फेदिका एनसीईआरटी चिंतक जत खने डिग्रम उमंग खक चिक्सतोंग निप ग्या ग्या चु क्या निस्पा सनाजत आकाशवाणी दिल्ली ने निमे छो चिक का हिंदी नवा नस्सुल तंग चिक नस्कर मे का अंग्रेजी नवा नस्सुल सनाजत मकमी खोक तो फे डिग्री में नंगा निमे छो चो चिक नस्कर मर चु ने चिक नस्कर मर ngap chu chuk pa film lyric sanchez la phulin आकाशवाणी दिल्ली ने निमे छो चो चिक नस्कर मर ngap chu ka urdin na nasul nisika midday news tang chu chot nis nasakar ma chong ka dopahar samachar sanajat Nyemi chutu nyis tang pedi ka usman la lobzang tandare sal kanilu. Testing ni tsiring palzum tang sonam lama sal kanilu rigang Sanchez la pulin. Yang chutu nyis tang skarmar ngap chungang eka ladaksin ang anasul sanajat.

ka sa tanga je dene degrim nyis pe skor gun juin degrim nyis pe na pito chu tsu tsnge ka la da sna na sul chu tsu tsnga tang skar mas nge ka spotlight degrim sana ja film lo gun degrim pito chu tsu tsnga tang pe dika sanches la pulin आकाशवाणी दिल्ली ने पिता चुत टुकिका हिंदी नगा नसुल तंग टुक तंग स्कर मशंगे का अंग्रेजी नगा नसुल सन आजाद गमयुल पिस कदलों डिग्रीम पिता चुत टुक तंग स्कर मशचुई का संचेस लपुलिन डिग्रीम भूलकन कुंचोक टाशी यंग डिग्रीम को डिग जतकन सोना मांगचुक मगमिक्योक्तों ने फिर डिग्रीम में नगा टुक तंग स्कर मशिपचुक का फिल्म लुरिक संचेस लपुलिन yang ledak senang nasul tang delcat pidau cucut urdun tang sekar macoy ka pidau cucut urdun tang pedika sewang puncok tang padma dolkari salkani lurik sanches lapulin agash wani srinagar ne cucut urdun tang sekar majib cuka urdun tang nasul tang delcat sarajat yang dining cani cucut rgyadi ka balti digrim mindawa charbu sanachat digrim phulkan gulzar husain tang digrim ko digzat khan sonamachu dining cani cucut rgyad tang phedika padma yang rul tang thopane salkhani jabru lyric sanches lapulin cani cucut rgyad tang skarma jipchu janika akashwani dilli ne samachar sandhya रुगुई का न्यूज एट नाइन तंग चतुर्थुतांस कर्मा चौई का उर्दिना आना सुलसन अजत यहाँ दिरिंग सानी चतुर्थुतांग पेदी का चिरिंग नोरबुतांग ठोपाने सलकाने जुंगलूर एक संचेस लफलेन का सही उन्हीं पिंग आजे दिरिंग में डिग्रीम गुनी स्कोर गुन

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी।

0: नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
4: India is accelerating towards universal health coverage.
5: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
4: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
5: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
9: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
10: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
11: IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी

0: का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में तीसरा स्थान जबकि पाटिल ने पांचवा स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में एक वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit, samriddh Bharat.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: कभी कभी।
1: फिल्म इन लोगों ने ये डिग्री में नंगा का सता मोहम्मद रफ़ी ने आब आए बाहर आई फिल्म लू सनाजत इलू चमकन आनंद बख्शी लुआंस डिक्कन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission. Information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit, samriddh Bharat.

दा साईं जराएं उषा मंगेशकर तं कंचन ने रफू चक्कर फिल्म लूसन अजाच कसत ऐसिंग ने किशोर कुमार तं लता मंगेशकर ने हाथ की सफाई फिल्म लूसन अजादिन हिलू चमकन गुलशन बावरा यहाँ लुहांस डिक्कन कल्याण जी आनंद जी

कसता फिल्म लू ने डिग्री मिस्टिंग जुप्पी का अनजाना फिल्म लू मोहम्मद रफी ने संचिस लफलिन इलू चमकन आनंद बख्शी यहाँ लुहांस डिक्कन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: Dawson Jarain, film lyrics and adjust, Najaka, Juani Leni Junjik Tain, Natochuzo, Chuchadu, Kasata, Akashwani Dilini, FM Gold, Dili Digrimun Sanazat.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान वर्ष 2025 से 2029 के दौरान संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की भी समीक्षा की जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। पश्चिम

0: भारत सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
1: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान की ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि 1947-48 के युद्ध में पीरू सिंह का अदम्य साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान भारतीय सैन्य इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में सदा अमर रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. In a social media post, Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue the conversation on boosting India-Italy friendship. Meanwhile, in another post, the Prime Minister thanked the Indian community in Italy for the warm welcome in Rome last evening. Mr. Modi said that their deep affection for India and commitment towards strengthening India-Italy ties are truly commendable. He added, the Indian diaspora continues to make the nation proud across the world. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda reaffirmed India's commitment to universal health coverage, digital health innovation and global health solidarity at the 79th World Health Assembly in Geneva. Addressing the assembly themed Reshaping Global Health, a Shared Responsibility yesterday, Mr. Nadda highlighted India's progress towards universal health coverage anchored in a whole-of-government and whole-of-society approach.
3: India is accelerating towards universal health coverage by expanding access to quality and affordable health care. For this, we have established 185,000 health and wellness centers, namely Ayushman Arogya Mandirs. In addition, we are committed to developing a robust and resilient public health infrastructure for pandemic preparedness and emergency responses.
2: U.S. Secretary of State Marco Rubio will undertake a 4-day visit to India beginning May 23rd. This will be his first visit to India. U.S. State Department has announced the visit that will take Rubio to Kolkata, Agra, Jaipur and New Delhi. State Department spokesman Tommy Pigott said Secretary Rubio will discuss energy, security, trade and defense cooperation during meetings with senior Indian officials. U.S. Embassy in New Delhi said that India will host a meeting of the Quad Group, which includes Australia, Japan and United States, and Secretary Rubio will attend the meeting. India is set to host a meeting of Quad foreign ministers next week that is expected to deliberate on press

0: facing global challenges, including the fallout of the West Asia crisis. The West Bengal government will roll out Annapurna scheme, providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. The money will be credited directly through direct benefit transfer into the Aadhaar-linked bank accounts of eligible beneficiaries. To qualify for the scheme, women must be aged between 25 and 60 years, must not be paying income tax and must not hold any permanent government employment or receive a regular salary or pension from state, central, statutory, panchayat, municipal, local bodies or government-aided educational institutions. West Bengal government has also notified a list of 66 classes of OBCs for reservation in the services and posts under the state government following the Calcutta High Court order. The state government has also cancelled the 10% reservation for OBC A and 7% reservation for OBC B. The India Meteorological Department has issued a yellow alert for heatwave conditions over the national capital till 25th of this month. Isolated places in the city are likely to reel under intense heat during the day, with maximum temperatures expected to be around 44 to 46 degrees Celsius today. Stock markets were trading in the red this morning as Sensex went down over 500 points and slipped below 75,000 mark. Nifty, on the other hand, also went down by over 150 points. Asian markets were also down as traders assessed the US-Iran tensions. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will clash with Mumbai Indians at Eden Gardens, Kolkata. The match will start at 7:30 p.m. Earlier, riding on a brilliant knock of 93 runs by Vaibhav Suryavanshi, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at Sawai Man Singh Stadium in Jaipur last night, chasing 221 runs set by Lucknow Super Giants. Rajasthan Royals scored 225 for 3 with 5 balls to spare. Dhruv Jurail scored an unbeaten 53 runs, while Yashasvi Jaiswal made 43 runs. Earlier, Rajasthan Royals won the toss and opted to bowl. Put into bat first, Lucknow Super Giants made 220 for 5 in stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar. Akashvani se Vishwa Darpan ke saath, main Vishal Sharma. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ होने वाली बैठक को लेकर बेहद उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात्रि भोज पर मिलने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने

0: कई विषयों पर इस दौरान अपने विचार साझा किए। एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कल शाम रोम में मिले गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए इटली में रहने वाले भारतीय समुदाय का धन्यवाद किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहन स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: India is accelerating towards universal health coverage.
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध
3: हैं। Pandemic preparedness and emergency responses.
0: विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री रूबियो कोलकाता, नई दिल्ली, आगरा और जयपुर जाएंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया है कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा अमरीका के विदेश मंत्री बैठक में हिस्सा लेंगे। क्वाड समूह में भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की 2 दिन की यात्रा पर कल रात पेइचिंग पहुंचे। इस दौरान श्री पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ वार्ता करेंगे। श्री पुतिन की ये यात्रा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा संपन्न होने के 1 सप्ताह से भी कम समय में हो रही है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। श्री पुतिन की ये यात्रा वर्ष 2001 में हस्ताक्षरित चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। नाइजीरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभियान में इस्लामिक स्टेट के 175 आतंकवादी मारे गए हैं। नाइजीरियाई सेना के प्रवक्ता समाइल उबा ने कल कहा कि अभियान के दौरान संयुक्त हमलों में चौकियों, हथियार डिपो, रसद केंद्रों, सैन्य उपकरणों और आतंकी गतिविधियों को मदद देने वाले वित्तीय नेटवर्क के मुख्यालयों को नष्ट किया गया। कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 136 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री रोजर काम्बा ने यह जानकारी दी। कांगो के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार देश में 543 संदिग्ध मामले और 32 पुष्ट संक्रमण दर्ज किए गए हैं। पड़ोसी देश युगांडा में 2 मामलों की जानकारी मिली है। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में भारतीय सहायक उच्चायोग के एक सहायक सुरक्षा प्रोटोकॉल अधिकारी कल सुबह खुलशी इलाके में दूतावास परिसर में मृत पाए गए। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान 35 वर्षीय नरेंद्र के रूप में हुई है। वे हरियाणा के रहने वाले थे और

0: चट्टोग्राम स्थित भारतीय दूतावास में कार्यरत थे। दूतावास कर्मियों ने नरेंद्र के कमरे से कोई जवाब न मिलने पर पुलिस को सूचित किया था। पुलिस ने बताया कि जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए चट्टोग्राम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुर्दाघर भेज दिया गया है। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सूडान के मध्य क्षेत्र में एक व्यस्त बाजार पर ड्रोन हमले में 28 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। पश्चिम कोदोफान प्रांत के घुबैश शहर के बाजार को उस समय निशाना बनाया गया जब वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। समूह ने हमले के लिए सेना को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि सूडानी सेना ने इन आरोपों से इनकार किया है। टेक कंपनी गूगल जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कई नए टूल और सिस्टम पेश करने जा रही है। इनमें जेमिनी स्पार्क नाम का एक नया पर्सनल एआई एजेंट भी शामिल है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good morning, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. India reaffirms its commitment to universal health coverage, digital health innovation and global health solidarity at the 79th World Health Assembly in Geneva. U.S. Secretary of State Marco Rubio to undertake a 4-day visit to India beginning May 23rd. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honor of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni and President Sergio Mattarella and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-East Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
2: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honor. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culture.

तो रूठा रूठा सा लगता है। कोई तरकीब बता मनाने की? हम खुद को गिरवी रख देंगे तो कीमत तो बता मुस्कुराने की। जी हाँ, मुस्कुराते रहिए और उसके लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार बैठे हैं। नमस्कार, ट्यून कर चुके हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज हूँ आपके साथ, करेंगे ढेर ढेर ढेर सारी बातें और साथ ही आपकी फरमाइश के गीत भी सुनेंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी करनी होगी थोड़ी मेहनत। fmgoldairdelhi@gmail.com पर करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज। आप भेजेंगे 9868686753 पर। और इसके साथ ही टेस्ट होगी आपकी फिल्मी नॉलेज भी, क्योंकि एक बार फिर मैं लेकर आ गई हूँ एक खूबसूरत सा म्यूजिक पीस। जी हाँ, एक सुपर हिट गाने का प्रिल्यूड है ये और इंटरल्यूड भी है, और गाने की एंडिंग में भी आप इसे सुनते हैं, मतलब कि गाना पहचानने के लिए ये म्यूजिक पीस काफी है। तो फिर क्यों करनी है देर, जल्दी से सुन लेते हैं ये म्यूजिक पीस। कानों और दिमाग को लगाइए काम पर और रेडियो पर।

जी हाँ, तो उम्मीद है कि ये गाना आपने जरूर जरूर जरूर पहचान ही लिया होगा। तो जल्दी से लिख भेजिए गीत के बोल और फिलहाल एंजॉय कीजिए ये पहला गाना प्रोग्राम का, जिसकी फरमाइश हमारे पास पहले ही आ गई थी। कहाँ से ये सुनिए, दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई ने भेजी थी इस गाने की रिक्वेस्ट मेरठ कैंट से। सुनते हैं।

बिल्कुल, गले लगाइए हर खुशी को और साथ में हमें मेल और व्हाट्सएप मैसेज भी करते रहिए। और उस धुन को अगर आपने पहचान लिया है जो मैंने आपसे कुछ ही देर पहले सुनाई थी आपको, तो गाने के बोल यानी मुखड़े के बोल जरूर आप हमें लिखकर भेजिए, वो भी जल्दी से जल्दी। चांद हो तुम मेरी रातों का, तुम्हारे बिना ये अंधेरा गहरा है, तुम्हारी ही रोशनी से मिलता है सुकून वरना बेचैनियों का पहरा है, तुम साथ हो तो हर लम्हा हसीन है, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है, तुमसे ही जुड़ी है हर खुशी मेरी, तुमसे ही मेरा हर ख्वाब पूरा है। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल ने ये ईमेल भेजा है हमें और एक खूबसूरत से गीत की फरमाइश भी लिखकर भेजी है जिसे कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पूरा कर दें। अगला मैसेज हम खोल लेते हैं सुनील पाठक जी का और इन्होंने भी एक फरमाइश लिखकर भेजी है, साथ ही नाम लिखे हैं कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक के साथ अनारकली बाजार जगराओ से ये ईमेल इन्होंने हमें भेजा है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज ढूंढती हूँ मैं जिसमें लिखी हो कोई अच्छी सी शायरी या कोई अच्छी बात, आप तो जानते ही हैं, एक मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट बिल्कुल उसी की तरह अट्रैक्ट करते हैं वो ईमेल और वो मैसेजेस मुझे, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, खूब अच्छी सी शायरियाँ लिखी होती हैं या फिर कोई भी ऐसी बात जिसे पढ़ने में ना दिल खुश हो जाए, एनर्जी आ जाए, एकदम से लगे कि हाँ भाई ये हुआ, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं मैसेज। और अभी तो मुझे फिलहाल सभी मैसेजेस में आज के सवाल का जवाब ही नजर आ रहा है जिसे मैं अभी तो रिवील नहीं कर सकती हूँ। एक ईमेल आ गया है, बीत गई तारों वाली हसीन रात, अब सूरज ने फैलाई है अपनी बात, एक प्यारी सी सुबह आई है साथ, बोलो गुड मॉर्निंग और जी लो दिन खास, हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए, गम की हर बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियाँ ये नया दिन कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए, आओ आज मिलकर एक सुलह कर लेते हैं, दिल तुम रख लेना और हम तुम्हें रख लेते हैं। क्या बात है, दिल खुश कर दिया अनु जी आपने, वाकई। अनु बड़जात्या, शमशुल खान, अनुराज बेनारा के साथ मुंबई से सीधा ये मैसेज आया है हमारे पास और वाकई बहुत अच्छा लगा। अगला मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है मुल्लापुर दाखा से। राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और शुभचंद्र ने मिलकर ये ईमेल हमें भेजा है और लिखा है कि जिंदगी मिल के बिताएंगे, हंसते हंसते हर गम भुलाएंगे जब तक है दम में दम। बिल्कुल जोश ऐसे ही बनाए रखिए, हम आपके साथ शामिल हैं। और व्हाट्सएप मैसेज का भी हम रुक कर लेते हैं अब तो। लिखा है भाई कि नाज जी नमस्कार, देखो जी आप सवाल तो पूछ लेते हो पर जवाब शामिल नहीं करते, ये बात तो बड़ी गलत है। गलत तो है, माफी के साथ मैं इस मैसेज को शामिल कर रही हूँ। और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने ये मैसेज हमें भेजा है, नाम शामिल नहीं किया, अब इसकी भरपाई कैसे की जाए, ऐसा करते हैं आप ही की फरमाइश पूरी कर देते हैं, कैसा रहेगा, नाराजगी दूर हो जाएगी ना, तो ठीक है। एक बड़ा ही खूबसूरत गाना इन्होंने लिखकर भेजा है, फिल्म है रोटी, किशोर दा और लता जी की मीठी आवाज में है ये गाना, बहुत ही चुलबुला बहुत ही खूबसूरत गाना है, चलिए सुनते हैं और बोधराज जी की नाराजगी को दूर कर देते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जी हाँ, यही है वो म्यूजिक पीस जिसे आपको सुनकर पहचानना है। और एक बात बताऊं आपको, ये कल वाला म्यूजिक पीस नहीं है। उग्रसेन यादव जी, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं दोबारा वही ट्यून बजाऊंगी, वही सवाल पूछूंगी? मैं अपने मूल सिद्धांतों से भटक नहीं रही हूं, जैसा कि आपने लिखा है। बता दूं कि ये बिल्कुल अलग गाना है। कल मैंने जो धुन आपको सुनाई थी वो थी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म से, और गाना था पास वो आने लगे जरा जरा, याद आया? कल ये धुन मैंने आपको सुनाई थी, आज दूसरी धुन। जरा ध्यान से सुनिए और जल्दी से जवाब लिखकर भेजिए। और अगला मैसेज आया है, नाम नहीं लिखा है इसमें, लिखा है दिनेश चौहान, बाबूराम जयपाल, खुदा बख्श खलीफा, बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार के साथ गांधी चौक बाड़मेर से आया है ये मैसेज। और लिखा है, नाज शेख साहिबा जी, आपकी आवाज में छुपा है कोई मीठा सा अफसाना, सुनकर जिसे दिल मेरा हो जाता है पूरी तरह दीवाना। जब भी आप धीरे से मेरा नाम बोलते हो, यकीन मानो आप इस धड़कते हुए दिल को जीत लेते हो। कोयल की कूक भी आपके आगे अब फीकी सी लगती है, आपकी हर एक बात सीधे रूह में उतरती है। खामोश सुबह में जैसे कोई सुरीली सी बांसुरी बाजे, आपकी आवाज का जादू मेरे कानों में हर पल साजे, और आपकी आवाज पर हमें बड़ा नाज है। और इस मैसेज को पढ़ते पढ़ते मुझे ये एहसास हुआ कि ये मैसेज कल भी आया था ना, तो वही कॉपी पेस्ट कर दिया। ये क्या बात हुई, अब मैं नाराज हूं? कोई बात नहीं, अगले शो में अगली बार कल नया मैसेज लिखिएगा नए आरजे के लिए। और अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं जल्दी से। दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, देख अब वो भी उतर आया अदाकारी पर। जरा जरा जरा नजर इनायत मेरे मैसेज पर भी कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट भेजिए व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष ने। और मैंने देखिए आपकी रिक्वेस्ट को सराखों पर रखा है और आपके मैसेज को शामिल भी कर लिया है। अगला मैसेज हम शामिल करेंगे जल्दी से, क्योंकि घड़ी जो है ना बहुत तेजी से भाग रही है। और कमाल की बात देखिए, आज भी मेरी नजर घड़ी पर ठीक 10:52 पर गई है। इत्तेफाक ही है, लेकिन बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है। जिंदगी एक फन है अपने अंदाज में गवाने का, ओके? और साथ ही प्लीज के साथ

अपना फरमाइशी गीत लिख भेजा है रवि, लता और प्रिया ने। विनिशा भीम के साथ है भिलाई से, ये ईमेल हमारे पास आया है। और सईद अब्बासी साहब लिख रहे हैं कि नाज ने अपनी जानकारियों का पिटारा खोला है, हमने भी दिमाग के घोड़े दौड़ाकर जवाब खोज निकाला है और एफएम गोल्ड को भेज दिया है। देखकर नाज के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर हमारा नाम पढ़ने में कतरा रही है। खुदा सलामत रखे, नाज को हम दुआ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुआओं के लिए। और मैं नहीं कतरा रही हूँ आपका नाम पढ़ने से और ना ही आपका मैसेज शामिल करने से। सईद अब्बासी साहब, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी के साथ पूरा परिवार इस ईमेल में शामिल है। चलिए कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा सांस लेती हूँ और वक्त नहीं है, सांस बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं। फिलहाल जल्दी से एक मैसेज और मैं शामिल कर रही हूँ। खुशी को मुट्ठी में बांधना चाहा तो डर ने धीरे से दरवाजा खटखटाया, जो अपना था उसे खोने का भय आया और मन ने खुद ही दुख का जाल बनाया। राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया, चारू जटोलिया के साथ ये मैसेज आया हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चलिए अब चूंकि वक्त बहुत कम बचा है तो मैं जल्दी से आज के गाने के बारे में आपको बता देती हूँ। गीत के बोल ज्यादातर लिसनर्स ने लिख भेजे हैं और बिल्कुल सही लिखकर भेजे हैं। जी हाँ, ये सॉन्ग है 90s की सुपरहिट मूवी और सुपरहिट और एवरग्रीन सॉन्ग में से ये एक है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लेकिन मुझे पहले से मालूम था कि आप नहीं करेंगे मुझे निराश और दे ही देंगे बिल्कुल सही जवाब। शामिल करती हूँ आप सभी के नाम। उससे पहले जल्दी से फटाफट से इस ट्रैक से जुड़ी कुछ खास बातें बता दूं। 1994 में आई थी खुद्दार मूवी, म्यूजिक था द ग्रेट अनु मलिक साहब का, स्क्रीन पर दिखी गोविंदा और करिश्मा कपूर की सुपर हिट जोड़ी और ये खूबसूरत बोल निकले थे नन अदर देन राहत इंदौरी साहब के जहन और उनकी कलम से। वैसे तो इस मूवी का हर गाना हिट था लेकिन स्पेशली ये सॉन्ग कुछ अलग ही था। अभी तक ये हमारी प्लेलिस्ट और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। देर नहीं करूंगी वरना आप और ज्यादा नाराज हो जाएंगे मुझसे। मधुबाला तिलंग कोटला दिल्ली से, ताज मोहम्मद अंसारी लक्सर हरिद्वार से, विजय नागर पहलवान बाजार सीताराम से दिल्ली में ये कोई जगह है, मनोहर लाल गांधी विजयनगर गाजियाबाद से, फारूक अली खान फैजी फराज फरहीन गुन्नौर यूपी से, सुभाष गुप्ता किराड़ी दिल्ली से, चारू जटोलिया दिल्ली नागलोई से, आफ्ताब अंसारी गंज डुडवारा यूपी से। इतने नाम तो मैंने लिख लिए हैं और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि कई नाम अभी भी मुझसे छूट गए होंगे। उन सभी से हाथ जोड़कर माफी। और साथ ही ये खूबसूरत ट्रैक अब मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज छोड़कर मत जाइएगा। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिएगा और उसके बाद वापस लौट आइएगा, कार्यक्रम लेकर हाजिर रहूंगी तस्वीर। ठीक है,

0: क्या हमारा भी मैसेज शामिल होगा?
1: जी बिल्कुल होगा। धर्मेंद्र छीपा जी, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार के साथ ये मैसेज आया है भोपालगढ़ राजस्थान से। और देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा नाम मैं शामिल कर सकूं, तो एक मैसेज तो मुझे जरूर और कोई शामिल करना होगा। इंदिरा नगर भवरपुर छत्तीसगढ़ से आया राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन का, उन्होंने भी दिया बिल्कुल सही जवाब और यही था वो गाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना

Namaskar, so swagatam, assalamualaikum and have a grand welcome by me, aapki host aur ghumakkar dost, Naz. Tune kiya hua hai aapne Akashwani Delhi ka FM Gold channel 100.1 megahertz par. Aur jahan ke studio ki ghadi mein is waqt time hua hai 11:11:33. And as you know already, ki ye samay hai sair sapate ka. क्योंकि ये समय है हमारी खास पेशकश तस्वीर का। तो खूबसूरत गानों से सजी तस्वीर की आज की प्लेलिस्ट के साथ मैं हूँ पूरी तरह से तैयार, लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो ध्यान से सुनिए, आज मैं करवाने वाली हूँ आपको जन्नत की सैर। अरे अरे घबराइए मत, इस दुनिया के पार वाली जन्नत का वक्त नहीं आया है अभी। मैं तो बात कर रही हूँ यहीं इसी धरती पर मौजूद जन्नत यानी स्वर्ग यानी हेवन की। जी हाँ, सर्दियों में बर्फ की मोटी चादर और गर्मियों में खूबसूरत फूलों के रंग जिस जगह की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं, बस वहीं वहीं की सैर करेंगे आज। तो दोस्तों थाम लीजिए दिल और एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग, क्योंकि जगह का नाम तो इसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

शाम की लाली, रात का काजल, सुबह की तकदीर हो तुम। चलता फिरता ताजमहल हो, सांस लेता कश्मीर

जी हाँ, अगर आपके भी जहन में था ये नाम कश्मीर, तो बजाइए खुद के लिए तालियां, क्योंकि बिल्कुल सही हैं आप। धरती के स्वर्ग, हेवन ऑन दिस अर्थ, जहां सब कुछ बिल्कुल वैसा सा है जैसा कि किसी ख्वाब में देखा हो कभी, वहीं मैं यानी नाज लेकर आ गई हूं आपको अभी। वैसे तो कश्मीर की शान में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है, लेकिन एक बड़ा ही मशहूर फारसी शेर है जो यहाँ आपकी नजर करना तो बनता है। तो अमीर खुसरो साहब से जोड़कर इस शेर को देखा जाता है, जिसमें कहा गया है कि गर फिरदौस बर्रुए जमीन नस्त, हमी नस्त ओ अमीन नस्त ओ हमी नस्त। माने अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जमीन पर मौजूद ये जगह हर मायने में जन्नत कहलाने लायक है, तो जाहिर है कि इसकी तस्वीर भी बहुत बड़ी और खूबसूरत होगी, जिसे वक्त की पाबंदी के साथ पूरी तरह निहार पाना थोड़ा मुश्किल है। तो आप क्या करें, सिंपल है भाई, अपने प्लान को करते हैं थोड़ा सा लिमिटेड और चलते हैं कश्मीर में मौजूद एक और स्वर्ग, और चलते हैं खूबसूरत गुलमर्ग।

और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम है विभा रानी। मैं एक फिल्म और थिएटर एक्टर हूँ और मैथिली और हिंदी के लेखक। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है और यह हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हाँ, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभिन्न हिस्सा का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रही हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, तो आकाशवाणी दरभंगा में मैंने कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। मैथिली ड्रामे किए, हिंदी ड्रामे किए और कैजुअल अनाउंसर के रूप में मैं वहाँ अनाउंसमेंट करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में आकाशवाणी और रेडियो ने मुझे जो दिया वो आज तक मेरे लिए एक नेमत की तरह है। परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, डिक्शन, रवानगी, कैसे किस बात को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इन सब की जानकारी मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो से मिली। और आज जो कुछ भी आप मुझ में पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस रेडियो का हिस्सा है, उसका योगदान है, उसका सहयोग है। और रेडियो सुनना कभी मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

कश्मीर का मुकुट या फिर खूबसूरत फूलों का मैदान और जिसे कहा जाता है गुलमर्ग, वहीं की सैर पर निकले हैं आप मेरे यानी नाज के साथ। वर्ल्ड फेमस साइट है और सी लेवल से इसकी ऊंचाई 2730 मीटर के आसपास है। अपनी नेचुरल ब्यूटी, बर्फ से ढके पहाड़ों और रंग बिरंगे फूलों से सजे मैदानों के लिए ये जगह जानी जाती है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में ये जगह आती है और मेन अट्रैक्शंस कौन कौन से हैं यहाँ, इस पर तफसील से होगी बात। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि कैसे और किस तरह पहुंचेंगे आप कश्मीर और फिर खूबसूरत गुलमर्ग। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा श्रीनगर एयरपोर्ट, अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो। और गुलमर्ग के लिए यहाँ से आपको तय करनी होगी करीब 55 किलोमीटर की दूरी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही गुलमर्ग के लिए सीधी टैक्सी आपको मिल जाएगी और इस सफर में आपको लगेंगे करीब 2 से 2.5 घंटे। बाय ट्रेन अगर आपका गुलमर्ग जाने का विचार है तो टिकट आप खरीदेंगे जम्मू तवी रेलवे स्टेशन का, जो देश के हर बड़े शहर से जुड़ा हुआ है, और फिर यहां से भी आप श्रीनगर या फिर गुलमर्ग के लिए सीधी टैक्सी बुक कर सकते हैं। कनेक्टिविटी कुछ ऐसी है कि श्रीनगर से गुलमर्ग जाते हुए करीब 14 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है टनमर्ग। विंटर्स में जब भारी बर्फबारी यहाँ पर होती है तो नॉर्मली गाड़ियों को यहीं पर रोक दिया जाता है और यहाँ से आगे यानी गुलमर्ग की ओर बढ़ने के लिए आपको बुक करनी होती है स्नो चेन वाली गाड़ियाँ। वो गाड़ियाँ जिनके टायरों पर चेन चढ़ी होती है और वो बर्फीले रास्तों पर फिसलती नहीं है। सुनिए ये खूबसूरत ट्रैक और फिर बातें करेंगे।

जबरदस्त स्नोफॉल देखने और करीब से महसूस करने का है अगर आपका सपना, तो जनाब गुलमर्ग आइए और दिसंबर से मार्च के बीच आइए, क्योंकि इस दौरान पूरे कश्मीर में बढ़िया बर्फबारी होती है और खासकर गुलमर्ग आपके एडवेंचर के हर शौक को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। शीतकालीन खेलों का केंद्र इस जगह को कहा जाता है, जहां स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, हॉर्स राइडिंग, हेली स्कीइंग या फिर टोबो गनिंग जैसी कई एक्टिविटीज का आप पार्ट बन सकते हैं। 2650 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स भी यहीं गुलमर्ग में मौजूद है जनाब। और इसके अलावा ट्रैकिंग और हिल क्लाइंबिंग के लिए भी ये जगह परफेक्ट है। गर्मियों में यानी मार्च से जून के बीच अगर आप आएंगे तो आपको नजर आएंगी हरी भरी वादियां, रंग बिरंगे फूल और सुहाना मौसम, जो मैदानी इलाकों के मुकाबले बहुत ज्यादा सुकून देने वाला होता है। कुल मिलाकर मोटा मोटी बात यह है कि आप चाहे जब भी गुलमर्ग आएं, यहाँ की खूबसूरती को कभी भूल नहीं पाएंगे।

गुल खिले हैं वादियों में, महक उठी है हर डगर, गुलमर्ग की इस खूबसूरती पर ठहर जाती है हर नजर। और जन्नत की जमीन पर बिखरे हों जैसे कुदरत के रंग हजार, गुलमर्ग की हवाओं में बहती है सिर्फ मोहब्बत और बहार। बिल्कुल सच बात है जी, और इस सच्चाई की गवाह मैं खुद भी हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले मैं खुद अपनी फैमिली के साथ गुलमर्ग घूमकर आ चुकी हूँ, और इसीलिए इतना कॉन्फिडेंटली आपको बोल रही हूँ कि जरूर जरूर जरूर आपको करनी चाहिए कश्मीर और यहाँ के गुलमर्ग की सैर। अच्छा, गुलमर्ग ये नाम कैसे इस जगह का पड़ा, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है, तो सुनिए। गुलमर्ग या गुलमार्ग, कश्मीरी भाषा में इसका मतलब होता है गुलाबों या फिर फूलों का रास्ता या

फिर फूलों का मैदान भी आप इसे कह सकते हैं। पुराना नाम इस जगह का है गौरी मार्ग, जिसका मतलब है देवी गौरी का मार्ग। लेकिन फिर साल 1579 से 1586 तक यहाँ शासन करने वाले यूसुफ शाह चक ने इस जगह का नाम बदलकर गुलमर्ग कर दिया था। 17वीं शताब्दी में मुगल शासन के दौरान और फिर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश काल में ये जगह गर्मियों की सैरगाह के रूप में मशहूर हुई। और वो साल था 1927 जब यहाँ गुलमर्ग में स्की क्लब की स्थापना हुई। फिर इसके बाद ब्रिटिश शासन का जब अंत हुआ तो ये जगह कश्मीर और जम्मू रियासत का हिस्सा बन गई और इसके बाद अक्टूबर 1947 में भारत में मिल गई। इस बीच कुछ समय के लिए इस जगह पर पाकिस्तान का कब्जा भी रहा, लेकिन बाद में भारतीय सेना ने इसे वापस ले लिया। तो ये थी इतिहास के पन्नों में गुलमर्ग की कहानी। मिलूंगी आपसे इस अगले गाने के बाद, तो जानेंगे यहाँ के फेमस टूरिस्ट पॉइंट्स मेरी जुबानी।

अपने सिग्नेचर डांस मूव्स के जरिए शर्मिला टैगोर जी को रिझाते शम्मी कपूर साहब इस गाने में आपको नजर आते हैं। और ये फिल्म थी साल 1964 में आई कश्मीर की कली। फिल्म की पूरी शूटिंग कश्मीर में ही हुई थी और खासकर इस मूवी के गाने जिस तरह से ब्लॉकबस्टर साबित हुए ना, उसमें कश्मीर की खूबसूरती का भी अपना किरदार और हिस्सा है। बढ़ेंगे आगे और एक बार फिर बात करेंगे खूबसूरत गुलमर्ग की, जहां की तस्वीर आप मेरे यानी नाज के साथ देख और सुन रहे हैं। तो जनाब,

खूबसूरत लोकेशंस की यहाँ कमी है नहीं, बस आपके पास वक्त तसल्ली होनी चाहिए। गुलमर्ग गोंडोला यहाँ के मेन अट्रैक्शंस में से एक है, जो कि पूरी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची केबल कार है। शुरुआत इसकी हुई थी साल 1998 में और महीना था यही, यानी कि मई, जिसके पहले फेज में इस गोंडोला ने सफर तय किया था 8,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कोंग दूरी तक का। फिर आया साल 2005 और फिर से महीना था यही, यानी कि मई, जब दूसरे फेज में गुलमर्ग गोंडोला पहुंचा 13,500 फीट की ऊंचाई पर। और फिर तीसरे फेज में चेयरलिफ्ट को भी इसमें जोड़ा गया और वो साल था 2011। गुलमर्ग, खिलनमर्ग, हिमालयन रेंज, पीर पंजाल रेंज और नंदा देवी जैसी खूबसूरत और ऊंची जगहों के शानदार नजारे आपको इस गोंडोला के अंदर से दिखाई देते हैं, जिन्हें आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें।

0: pmsuryaghar.gov.in
1: घर घर सूर्य घर।
2: द हेवन ऑन द अर्थ यानी धरती के स्वर्ग कश्मीर में है आप मेरे यानी नाज के साथ, जहां खूबसूरत गुलमर्ग की तस्वीर से हम हो रहे हैं रूबरू, जिसके बारे में मैं आपसे जितना भी कहूं कम ही होगा, क्योंकि चांदी सी चमकती बर्फ पर जब पड़ती है धूप की किरण, तो गुलमर्ग का हर एक नजारा जीत लेता है हर मुसाफिर का मन। सिर्फ 6 किलोमीटर दूर आप बढ़ेंगे गुलमर्ग से तो पहुंचेंगे खिलन मार्ग, जो एक बहुत ही खूबसूरत घास का मैदान है और जहां से हिमालय पर्वत रेंज का शानदार और कभी न भुला सकने वाला नजारा आपको दिखाई देगा। वसंत के मौसम में तो इस जगह की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि हर तरफ रंग बिरंगे फूल जो नजर आते हैं, और सर्दियों के मौसम में भी ये जगह कमाल लगती है। स्कीइंग के शौकीनों के लिए ये एक बढ़िया ढलान है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि गुलमर्ग कई धार्मिक स्थलों का भी है घर। यहाँ मौजूद महारानी मंदिर जरूर जाइएगा, जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है।

बाबा ऋषि की मशहूर दरगाह भी यहीं पर है, जो 15वीं शताब्दी के मशहूर सूफी संत बाबा पयामुद्दीन ऋषि को समर्पित है। सेंट मैरी चर्च भी है यहाँ, जिसका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था और जो धूसर ईंटों, हरी छत और लकड़ी की नक्काशीदार दीवारों से बनी एक खूबसूरत इमारत है। विक्टोरियन आर्किटेक्चर का चमत्कार इस इमारत को माना जाता है और जो बर्फ से ढकी होने पर और भी, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है।

मुंबई का फैशन और कश्मीर का मौसम, दोनों का ना कोई मुकाबला है और ना ही इस बात की गारंटी कोई आपको दे सकता है कि ये हमेशा एक सा ही रहेगा। जबरदस्त स्नोफॉल से लेकर चमचमाती धूप तक और फिर झमाझम बारिश कब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो बात शत प्रतिशत कही जा सकती है वो ये है कि कश्मीर और गुलमर्ग की खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं है। तभी तो बॉलीवुड की फिल्मों और गानों की शूटिंग के लिए ये जगह बेस्टम बेस्ट मानी जाती रही है। और इतनी सारी खूबियों के बाद अगर यहाँ के स्वाद की बात ना हो तो तस्वीर कुछ अधूरी सी रह जाएगी, नहीं? और ये हम होने नहीं देंगे और आपको बताएंगे गुलमर्ग में मिलने वाले लजीज पकवानों के बारे में भी बिल्कुल अभी। तो जनाब, ऑथेंटिक कश्मीरी स्वाद आप गुलमर्ग में चखेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है कश्मीरी कहवा या कावा का, जो बेसिकली केसर, दालचीनी, इलायची और कुतरे हुए बादाम से बनी ऑथेंटिक कश्मीरी ग्रीन टी है। और गुलमर्ग में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड में ये शरीर को तुरंत राहत और गर्माहट देने का काम करती है। इसके अलावा नून चाय, जिसे शीर चाय भी कहा जाता है, एक कमाल की गुलाबी रंग की नमकीन चाय है जिसे दूध, पिस्ता और बेकिंग सोडा मिलाकर बनाया जाता है। नॉनवेज के शौकीनों को मिलेगा रोगन जोश, गुश्ताबा, रिश्ता और कश्मीरी यखनी। और फिर कंप्लीटली वेजिटेरियन लोगों की अगर बात करें तो आपके लिए मौजूद है वर्ल्ड फेमस कश्मीरी दमालू, पनीर से बनी खास डिश, लद्दर चमन और कमल ककड़ी से बनी एक खास करी जिसका नाम है नादुरू यखनी। कश्मीरी बेकर्स आपको लोकल मार्केट में मिल जाएंगे, जिन्हें कांडूर कहा जाता है यहाँ, और उनकी दुकानों पर आप चखेंगे लवासा और चोच वोरू जैसी कई सारी ब्रेड्स, जो यहाँ की अनगिनत खासियतों में से एक है। और फिलहाल दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तस्वीर में गुलमर्ग का ये सफर उम्मीद है आपने पसंद किया होगा मेरे यानी नाज के साथ। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, ये वादा है आपसे। फिलहाल खुदा हाफिज, गुड बाय और एक प्यार भरा नमस्ते।

कसता द ग्रेट कैमलर फिल्म अलबो आशा भोसले तंग टपोने संचित पलिन लुर सुमकन आनंद बख्शी यंग लॉन्सिकन आते परमन

दर्द फिल्म लो दाग संगे शाही आशा भोसले ने सनजेट्स कसता बातों बातों में फिल्म बोल आशा आशा भोसले तंग अमित कुमार इसका ने संचेस लापरिन योगेश सोमसे इलवानॉन सिकंद राजेश रोशन।

0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई।
1: प्यार की बिना तेरे सुने ही बात हो गई।
0: ओहो ओहो ओहो।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
3: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
3: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अकरम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
3: जी,
1: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
3: जी। श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
1: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
3: जी,
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
3: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
1: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
3: जी,
1: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
3: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
1: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
3: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है, जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
1: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है, जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
3: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है, जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
3: जी,
1: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
3: जी। एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है।
3: जी,
1: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
3: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते। क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेज़न नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
3: जी, तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी अमेज़न वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
3: अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
1: 8800044559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
3: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
3: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
0: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
4: Hello, children.
5: Hello, ma'am.
6: Hello, ma'am.
4: Hello, hello. How are you all?
5: We are fine, ma'am.
6: I am fine, ma'am. How are you, ma'am?
4: I am good. Thank you so much, Vanya. All right. So, children, today I am going to share something with you. Are you ready?
5: Yes, ma'am.
6: Okay, ma'am.
4: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
5: Yes,
6: pets are so lovely.
4: Right, Soham.
7: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
4: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
7: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
4: Wow, that's good. And what about you, Navya?
8: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
4: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
9: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
4: Oh, that's so exciting, isn't it?
5: Yes, ma'am.
4: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
5: Yes, ma'am.
4: Can you name some birds?
6: Sparrow.
4: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
6: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
4: Yes, peacock is a colorful bird.
6: Ma'am, parrot.
4: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
10: Any guesses?
4: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
5: Yes, ma'am.
6: It will be fun.
4: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black. As you know. How to be beautiful. He wanted to know. Colorful feathers. He wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it. In his tail.
5: Then he found another.
4: He picked up. All without fail. He stuck them. In his wings. Put one on his head. I am now beautiful. He danced and said. The other crows
10: Laughed at him.
11: Oh, what a fool you are. You are beautiful in black. We love you. For what you are.
4: So children, now listen to the same poem in a lovely song.

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
2: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
2: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
2: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
2: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है मगर।
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
2: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
2: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते एक पौधा लगाओ?
2: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा। कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
2: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: हूँ मालिक काका, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिक काका, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिक काका।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: जी दे।
0: चलिए दादाजी।

0: राजू सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
2: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: बदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: दक्षिण एशियाई एनसीईआरटी चिंता सत्तर निटिग्रीम उमंग सनसेट्स मजे आकाशवाणी लेने जुंजितांगिन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमरीका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमरीका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार

0: पंकज उदास की आवाज़ में अभी आप आजा सनम फिल्म से नगमा सुन रहे थे। लीजिए प्रोग्राम का अगला नगमा आंधी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, गुलजार की लिखी इस नगमे के मौसिकार राहुल देव परमन।
1: बरसों बाद निकली हूँ ऐसा लगता।

सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है दिन के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हम किसी से कम नहीं फिल्म से नगमा पेश करने जा रही हूँ मोहम्मद रफी की आवाज में। मशहूर के लिखे इस नगमे के मौसिकार आटे बर्मन।

0: Akashwani lene jönjiktain kasita Akashwani telene sunla urdina ya mitte news ya testine dopahar samachar sanazat.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत इटली इक्तिसादी इश्तराक को फरोग देने के लिए आज रोम में इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मिलोनी से बातचीत करेंगे। वजीर आजम मोदी और जॉर्जिया मिलोनी ने भारत इटली कलीदी शराकतदारी के लिए आइंदा का लाए अमल नुमाया किया है। एक मुश्तरका मजमून में उन्होंने मुख्तलिफ इक्तिसादी इकदामात को उजागर किया। दिफाई तहकीक की भारतीय तंजीम DRDO ने ठीक निशाने पर वार करने वाले ड्रोन मिसाइल V3 का कामयाब तजुर्बा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जात पर मबनी मर्दुमशुमारी के अमल के सिलसिले में मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क के शिमाली और वसी हिस्सों में शदीद गर्मी जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। और IPL क्रिकेट में आज ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो आज इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मिलोनी के साथ बातचीत के मुंतजर हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस मीटिंग में भारत इटली ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने के बाद उन्हें डिनर पर वजीर आजम मिलोनी से मुलाकात करने और तारीखी कोलेजियम जाने का मौका मिला। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मौजूआत पर अपना अपना नुक्ता नजर पेश किया। वजीर आजम ने मजीद कहा कि आज की बातचीत में भारत इटली दोस्ती को फरोग देने पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान वजीर आजम मोदी इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मिलोनी और सदर सर्गियो मटरेला के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें भारत और इटली के दरमियान तआवुन को फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम मोदी के दौरे के दौरान भारत और इटली के दरमियान तआवुन को फरोग देने, खास तौर से भारत मगरबी एशिया यूरोप इकतसादी कॉरिडोर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मुश्तरका कलीदी अमली मंसूबे 2025 से 2029 तक का भी जायजा लिया जाएगा। जनाब मोदी खुराक और ज़राअत की तंजीम के सदर दफ्तर का भी दौरा करेंगे और कसीर जहती निज़ाम और पूरी दुनिया में खुराक की यकीनी फराहमी के भारत के अहद को मजीद मुस्तहकम करेंगे। भारत और इटली के दरमियान ताल्लुकात में गुज़िश्ता बरसों में खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई है और अब ये एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हम मनसब जॉर्जिया मिलोनी की जानिब से तहरीर करदा एक मुश्तरका मजमून में दोनों रहनुमाओं ने इस बात को उजागर किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते खुशगवार दोस्ती से खुसूसी कलीदी शराकतदारी में तब्दील हो गए हैं, जो जमहूरियत और मुस्तकबिल के मुश्तरका नजरिए पर मबनी हैं। दोनों रहनुमाओं ने इस बात का जिक्र किया है कि एक ऐसे वक्त में कि जब आलमी निज़ाम में नुमाया तब्दीलियां रुनुमा हो रही हैं, भारत इटली शराकतदारी में आला तरीन सियासी और इदारा जाती सतहों पर मुसलसल राबतों से पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने कहा कि इस शराकतदारी को नई समत मिल रही है, जिसे इक्तिसादी इनफरादियत, समाजी इख्तरा और दोनों मुल्कों के दरमियान सदियों पुरानी तहजीब से तहरीक हासिल है। दोनों रहनुमाओं ने इस मजमून में कहा है कि उनके इश्तराक से इस मुश्तरका समझ की अक्कासी होती है कि 21वीं सदी में खुशहाली और सिक्योरिटी का इन्हिसार मुल्कों की इख्तरा, तवानाई के बंदोबस्त, मुंतकली और इख्तदार आला को मुस्तहकम बनाने की सलाहियत पर होगा। दो कौमी रहनुमाओं में शाये मजमून में दोनों रहनुमाओं ने नए अहदाफ की हुसूलियाबी और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और वसत देने के अपने अहद का इयादा किया है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक का मकसद इटली की डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग की महारत और भारत की तेज़ रफ्तार तरक्की, इंजीनियरिंग की सलाहियत, इख्तरा के इको निज़ाम और कारोबारी मजबूती के दरमियान मजीद तालमेल पैदा करना है। भारत ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अंदरूनी मुल्क अपनी दिफाई सलाहियतों को मुस्तहकम करने की जानिब एक और अहम कदम उठाया है। दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO ने बिना पायलट वाले एरियल व्हीकल से दागे गए प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल की तैयारी की कामयाब फाइनल आजमाइश की, जो मुल्क के दिफाई शोबे के लिए एक अहम हुसूलियाबी है। पेश है

0: एक रिपोर्ट।
1: ये आजमाइश आंध्र प्रदेश में कुरनूल के नजदीक डीआरडीओ के टेस्ट रेंज में फिजा से जमीन पर और फिजा से फिजा में दोनों तरीकों से की गई। आजमाइश के दौरान मिजाइल निजाम को एक जदीद मजबूत ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए अमल में लाया गया। इन आजमाइशों से जंग की मुख्तलिफ सूरत हाल में मिजाइल के ठीक निशाने पर वार करने की सलाहियत और मुतबरियत का कामयाब मुजाहरा हुआ। इस मिजाइल को रिसर्च सेंटर इमारात हैदराबाद में डीआरडीओ की दीगर लेबोरेटरियों के साथ इश्तराक में तैयार किया गया है। मुकम्मल तौर पर अंदरून मुल्क तैयार किए गए इस मिजाइल से भारत के घरेलू दिफाई मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम की बढ़ती हुई ताकत का इजहार होता है। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है जिसमें आने वाली मर्दमशुमारी के एक हिस्से के तौर पर जात पर मबनी मर्दमशुमारी कराए जाने के मरकज के फैसले को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला सरकार की पॉलिसी के दायरे में आता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली एक बेंच ने कहा कि सरकार ये जानना चाहती है कि पसमांदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद कितनी है ताकि उनके लिए फलाही इकदाम किए जा सकें। बेंच ने कहा कि इस तरह के आदादोशुमार इकट्ठा करना कोई गलत बात नहीं है और उसने इस मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हम मनसब आन यूबेक्स के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान दिफाई सनद और अहम नौयत के इश्तराक को मजीद मुस्तहकम किए जाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया गया। दोनों ममालिक इलाकाई अमन इस्तेहकाम और टेक्नोलॉजी में इश्तराक के तई अहदबंद हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि ये मीटिंग इंतहाई सूदमंद रही और भारत और जनूबी कोरिया ने दिफाई साइबर इश्तराक को फरोग देने के बारे में समझौतों का तबादला किया। मफाहमत के इकरारनामों का तबादला भारत की नेशनल डिफेंस कॉलेज, कोरिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और अक़वामे मुत्तहिदा क़याम अमन इश्तराक के दरमियान किया गया। चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में बातचीत की जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और ईरान यूक्रेन और बैन अल-अक़वामी तिजारत समेत अहम आलमी उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि इस बातचीत से चीन और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक साझेदारी मुस्तहकम होगी और अक़वामे मुत्तहिदा SCO और ब्रिक्स जैसे फोरमों के जरिए इश्तराक में इजाफा होगा। पंजाब पुलिस ने दुबई में कायम मनशियात की स्मगलिंग के एक बैन अल-अक़वामी गिरोह का पता लगाया है जो अबूजहबी से अपनी कार्रवाइयां अंजाम दे रहा था और साथ ही साथ रियासत पंजाब के सरहदी हिस्से और कौमी राजधानी दिल्ली में मनशियात पहुंचा रहा था। पंजाब और हरियाणा में शदीद गर्मी जारी है और दोनों रियासतों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 और 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रह रहा है। मौसमियात के महकमे ने पहले ही खत्ते के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ में वाकई मौसमियात के महकमे के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि मौसम बदस्तूर खुश्क रहेगा और आइंदा 3 से 4 दिनों में दर्जे हरारत में इजाफा हो सकता है। राजस्थान के ज्यादातर जिले इस वक्त शदीद गर्मी की गिरफ्त में हैं। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी के सबब आज 2 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने इस हफ्ते के दौरान मुल्क के शिमाल मगरबी और वसी हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद गर्मी की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में आइंदा 4 रोज के दौरान गर्मी में तेजी आने का इम्कान है। इस दौरान आसाम, मेघालय, केरलम, माहे, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार जजायर में कल तक शदीद बारिश हो सकती है। IPL क्रिकेट में कल रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में वैभव सूर्यवंशी के शानदार 93 रन की इनिंग्स की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत इटली इक्तिसादी इश्तराक को फरोग देने के लिए आज रोम में इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मिलोनी से बातचीत करेंगे। वजीर आजम मोदी और जॉर्जिया मिलोनी ने भारत इटली कलीदी शराकत दारी के लिए आइंदा का लाए अमल नुमाया किया है। एक मुश्तरका मजमून में उन्होंने मुख्तलिफ इक्तिसादी इकदाम को उजागर किया। दिफाई तहकीक की भारतीय तंजीम DRDO ने ठीक निशाने पर वार करने वाले ड्रोन मिजाइल V3 का कामयाब तजुर्बा किया। सुप्रीम कोर्ट ने जात पर मबनी मर्दमशुमारी के अमल के सिलसिले में मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क के शिमाली और वस्ती हिस्सों में शदीद गर्मी जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस

0: degrees Celsius across both states. The meteorological department has already issued an orange alert for the region. A report.
1: Director of the Chandigarh-based Met Department, Surinder Pal, told Akashvani that the weather will remain dry and temperatures would increase in the coming 3-4 days. Western districts in both the states would experience more heatwave conditions. In Punjab, these districts will be Amritsar, Firozpur, Tarn Taran, Mansa, Sangrur, Bhatinda and Muktsar. And in Haryana, Hisar, Rohtak, Jhajjar, Bhiwani, Gurugram and Faridabad would feel the maximum heat. In the last 24 hours, Faridkot in Punjab sizzled at 47.3 degrees Celsius. And Rohtak felt the heat at 46.9 degrees Celsius in Haryana. Rajesh Bali, Akashvani News, Jalandhar.
0: In Bangladesh, an assistant security protocol officer at the Assistant High Commission of India in Chattogram has been found dead at the mission premises in the Kulshi area. Police said the incident occurred yesterday morning. The deceased has been identified as a 35-year-old Narinder, a resident of Haryana in India, who was serving at the mission. The Assistant High Commission of India is in touch with the family to arrange the repatriation of the mortal remains. Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin held talks in Beijing today, focusing on bilateral relations and key global issues, including Iran, the Ukraine conflict and the international trade. China's foreign ministry said the talks would deepen the strategic partnership between Beijing and Moscow and enhance coordination through forums such as the United Nations, SCO and BRICS. Both nations also highlighted the growing cooperation in trade, energy and security, with bilateral trade surpassing $200 billion. The meeting came shortly after US President Donald Trump visited China for discussions with Xi on regional and global developments. US President Donald Trump will attend the G7 summit in France next month amid growing tensions between Washington and several European allies over the Iran conflict. According to a White House official, the summit to be held from June 15 to 17 in Avia-les-Bains in southeastern France will focus on issues including artificial intelligence, trade, critical minerals, immigration and global security. In Congo, the death toll due to Ebola outbreak has risen to 136. Health Minister Roger Kamba informed this amid the spread of deadly virus that has gripped the eastern part of the country. According to Congolese health authorities, the country has recorded 543 suspected cases and 32 confirmed infections, while neighboring Uganda has reported 2 confirmed cases. On to sports. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Mumbai Indians at the iconic Eden Gardens in Kolkata. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping their playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare. Benchmark domestic equity indices were trading marginally lower in the afternoon session. The Sensex dropped 101 points to 75,100, while the Nifty dipped 24 points to 23,594 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outlined roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging Centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44-degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यूएलपीजीएम V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
4: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास डीआरडीओ की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएलपीजीएम V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि

कसता आशा भोसले तंग किशोर कुमारेर सलकानिलु दीवार फिल्म ने सनजत साहिरेर समस्कानिलु अलुयांग श्रिकन आडी परमन।

फिल्म इंडस्ट्री में सिंह जुगपे का कसता कालिया फिल्म लो आशा भोसले ने सनजत मजरूर सुमस्कने लो लुयांग श्रिकन आडी बर्मन

0: नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरी टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। India and Italy have decided to elevate their bilateral ties to a special strategic partnership and enhance cooperation in areas of trade, investment and new technologies. Prime Minister Narendra Modi made the announcement following delegation-level talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 provides a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working on establishing an India-Italy Innovation Center. He added that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production of military hardware.
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: Mr. Modi also said both countries are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and noted that their joint efforts against terror financing have set an important global example. Speaking on the occasion, Italian Prime Minister stressed the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific region. Prime Minister Modi also called on Italian President Sergio Mattarella and held discussions on further expanding the bilateral partnership. Mr. Modi reached Italy yesterday on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and the UAE. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has stressed the need for heightened vigilance and foolproof security arrangements to ensure a safe, secure and fair conduct of the upcoming NEET UG re-examination. Mr. Pradhan said this

Dans son jirangé, gamul pescatlon de crime sanazats. De grim polkanin pin conchok tashi, de grime korikzat kan sonam anchok. Medium wave 284.9 meters, yani 1053 kilohertz. और एफएम 101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लिए केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है शाम के 6:40। पेश करते हैं फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाई सुनेंगे आज के इस कार्यक्रम में कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

कार्यक्रम के आरंभ में अभी आपने सुना दबंग फिल्म से की राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। गीतकार थे फैज़ अनवर और संगीतकार साजिद वाजिद। आइए सुनते हैं अगला गीत, हाउसफुल फिल्म से मीका और सनिधि चौहान की आवाज़ों में गीत। समीर के लिखे इस गीत को धुन से संवारा है शंकर एहसान लॉय ने।

रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से की लीजिए सुनिए सोनू निगम की आवाज़ में। जयदीप साहनी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

अभी आपने सुना वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म से की कार्तिक की आवाज़ में। गीतकार थे नीलेश मिश्रा और संगीतकार प्रीतम। लीजिए सुनिए अगला गीत 1 2 3 फिल्म से महालक्ष्मी अय्यर और राघव सचार की आवाज़ों में। आदित्य धर किल के इस गीत को धुन से सवारा है राघव सचार ने।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए इश्क इन पैरिस फिल्म से सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में गीत। गीतकार है कौशल मुनीर और संगीतकार साजिद वाजिद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Dag Sangisrange, het is Wang Punchoktang, Padma Dolkarni, het is Salkani, Lurik Sanazats. Ngaje Akashwani, Leni Junjiktang in, Pitovaches Hot Urduntang Skalma, Jipju Chaduk. Kasata Akashwani, Srinagarne, Udina Anatsultang, Tapsara, Sanazat.
1: सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक-एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। घर घर

0: उनके इस रवैये को, उस लहजे को हमने कोशिश की है कि शेरी पढ़ाई में ढालने की साहिबा में।
1: इसी तरह से पुरखाश के मुसनिफ प्रोफेसर रतन तलाशी ने इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
2: पहली किताब है मेरी जो मैंने रिलीज की है, इससे पहले मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन उनका वो रिलीज फंक्शन उस तरह से नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये अपने वतन में मैंने इसको रिलीज किया, कश्मीर में रिलीज किया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ मिला लोगों का, अपने दोस्त जो अहबाब जो शुभचिन तक जो थे सब आए हैं। खुशी के माहौल में किताब रिलीज हुई। मुझे उम्मीद है कि दिस बुक विल बी वेल रिसीव्ड, क्योंकि मैंने ये कश्मीरी पढ़ाया है और इस पढ़ाने के बीच मैंने जो अपने स्टूडेंट के अदब के मसाइल के बारे में जो कुछ भी सीखा है, उन मसाइल पर मैंने इस किताब में बात की है।
1: नाज़िम ज़रात कश्मीर सरताज अहमद शाह ने कहा है कि नौजवानों की तरफ से मक्सबानी के यूनिटों का तजारती पैमाने पर क्याम नहायत हौसला अफजा है। आज शहद की मक्खियों के आर्मी दिन के मौके पर महकमे ज़रात के सदर दफ्तर श्रीनगर में मुनक़िद एक तकरीब के दौरान मुकर्रीन ने गज़ाई सलामती, हयातियाती तहफ़ुज़ और माहौल की देर पाइयत में मधुमक्खियों की अहमियत उजागर की गई। जम्मू डिवीजन में 23 मई मुनक़िद होने वाले रोजगार मेले के दौरान 220 नौजवानों को सरकारी नौकरियों के तकरारनामे फराहम किए जाएंगे, जिनमें से कई एक को रेलवे में भी तैनात किया जाएगा। इस रोजगार मेले में मुल्की सतह पर 51,000 उम्मीदवारों को तैनाती के आर्डर फराहम किए जाएंगे, जिनमें जम्मू कश्मीर के 220 नौजवान भी शामिल होंगे। जम्मू के डिवीजनल रेलवे मैनेजर विवेक कुमार ने बताया कि यह मौका उन 220 नौजवानों के लिए समाजी बाख्तियारी और इकसादी इस्तेहकाम का एक सुनहरी मौका होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू सहाफत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के लिए दाखिले का ऐलान किया है। आईआईएमसी नई दिल्ली की वाइस चांसलर डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर ने कहा है कि इस कोर्स में 30 निशस्तों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 26 मई है और इम्तिहान 1 जून को लिया जाएगा।
3: आईआईएमसी की जानिब से फराहम की गई इत्तला के मुताबिक दाखिला इम्तिहान दिल्ली कैंपस में होगा। शोबे उर्दू सहाफत पिछले एक दहाई से भी ज्यादा वक्त से उर्दू के साथ साथ दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए वर्किंग प्रोफेशनल तैयार कर रहा है। एक अहम बात यहाँ यह है कि डिपार्टमेंट में मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है। अगर आपके अंदर भी सहाफत के मैदान में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो देर ना करें।
1: जम्मू कश्मीर में गर्मी की शिद्दत में रोज अफसों इजाफा हो रहा है और जम्मू में दिन का दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावज कर गया है। जम्मू में गर्मी की लू से बचने के लिए आवाम के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। इस सिलसिले में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद हुसैन ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
4: ये शिद्दत इसकी बढ़ती जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है कि इसमें कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, तो इनको थोड़ा सा इसमें बचाव करने की हिदायत हमारा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हम इशू करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारी यही सलाह है आम पब्लिक को कि जितना हो सके दिन के टाइम, स्पेशली एक जो हीट वेव हम देखते हैं ज्यादा जो शिद्दत होती है वो कोई 12 से लेकर 3 बजे तक का ज्यादा एक पीरियड होता है, जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर।
1: मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 30.3 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 42.6 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब सुबह 5:26 और गरूब आफ्ताब शाम 7:30 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीर में नशर होगा। खुदा हाफिज।
5: समीन आताब आज का तबसरा लेकर मैं बसारत कुल। आज दुनिया भर में वर्ल्ड बी डे मनाया जा रहा है। शहद की मक्खियाँ कुदरत का एक अजीम तोहफा है जो न सिर्फ शहद पैदा करती हैं बल्कि ज़रई पैदावार, गज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और माहौलाती तवाज़ुन बरकरार रखने में भी बुनियादी किरदार अदा करती हैं। अगर शहद मक्खियाँ न हों तो फल, सब्जियाँ, बादाम, सेब और कई गज़ाई अजनास की पैदावार शदीद मुतासर हो सकती है। जम्मू कश्मीर बखसूस वादी कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती, मुतनव नबातात और साफ माहौल की वजह से शहद के मक्खियों की अफजाइश के लिए नहायत मौजूद खिता माना जाता है। ज़रई माहरीन के मुताबिक मक्खियों की मौजूदगी से बागात की पैदावार में 20 से 30% तक इजाफा मुमकिन होता है। शहद की पैदावार के लिहाज से चीन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जबकि भारत भी अहम पैदा कुनंदगान में शुमार होता है। कश्मीर में सालाना हजारों मेट्रिक टन शहद पैदा किया जाता है और इस शोबे में रोजगार के

0: say ministry of minority na altari sangata ya scheme ba chang rule ne ju la la zeba chang go ne de ba ra sangata na la chun chi zer ju yo ne amo ngati jo se ya ze fa chokla disabled zer ju em
1: disabled ju
0: ha ha gaon la feral so se kan ni fruze gaon la kwa met gaon la ngata zer la mo ba se welfare scheme ka khon dun thon me do ni fa chi chi yo je se si di ba ra ya la जिप साल बस ना सिसे बात पिंगा कोशिश बन जाए
1: सही
0: दुआ ना जोम से सिंह पर जो दोनों गधा दिखा ट्राइबल्स है ना गधा ना सी ट्राइबली मीनिंग पर गधा ना सिस्टास नरी यूज़र आंजो की ट्राइबल दे म्यून लज़र लो गाउन कुंती हिली एरियास या फॉरेस्ट एरियास दो चौपर जगह ना दुक्सियों गाने अनुकोनी कल्चर ना कुंती दुक्सो लांजोन ए आम म्यून पर यानी गधा ना जैसे शहर अंदुकानी अलग युद्ध खानी मीन लता है ट्राइबल जर गांव निकाम से कल्चर पुत्सोख अलग डिफरेंट युद्ध जुक्सो लांजो नाला गयोत कौन जाजो नाला गयोत कौन जर्जो नाला गयोत दोन नगादांग से ट्राइबल जर जुआ जुआ ना जोम से नगादांग से नगाती बल्टी का मनेटी स्थान नरी नगादांग चिकपात नगादांग बल्टी जो इस पर नगादांग में ट्राइबल संजय नरीक्षा सुन
1: रिक्षा
0: जो चीज नगादांग लद्दाख पो नगादांग 99% पो ट्राइबल गुआना फरवरी मदान सा ट्राइबल इन आता रहो जो ओ मन ट्राइबल अनु चीज स्कीम सिग्ना जे ने जो सी पच दोनों जो ट्राइबल अंगदा से दोसे दियनो गवर्नमेंट स्कीम जो लेने जो गांव नंगदा जे ने प्रधानमंत्री जन जाति आदिवासी नया महाया अभियान जे जुया पीएम जन मन जे जुया
1: ओ जो
0: दी ट्राइबल स्कीम पॉइंट्स जो की रलता रे गा कम्युनिटी चिगला छू थन चस में छू माथन में नया नांग छु चे सिखो नारी या रोड दिसो फो चीज आनु कोसिस न्यानु मदद बन्छु या
1: यु
0: इन सजु मोस्टली गदांगासी कोम ज्ञान से चेस तनाजु पीवीटीजी जबन्जु गाव जन वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटी जबन्जु गाव वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटी गा एरिया इन न देमिन लदी दिस स्कीम प्रोजेक्ट पेन जबन्जु या
1: लेखमो गजन्जु
0: इनजु जने मोयास स्कीम चियो जु देव गदांग से जरजु धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान जरिंची दिउ जनो दजवा जरिं स्कीम जिंजु या दि दजवा जर खान पे छिन सो जबन्जु मति की इंडिया नु मति अलग अलग मिनिस्ट्री हो जु मैं ना अलग अलग डिपार्टमेंट है जो दी डिपार्टमेंट सामान अच्छी खबर से लास फुलचास पसंद सो जो गांव लगा ना ऐसी कन्वर्जन जरे जो जोम से लास बचास पो जोम से लास चीफ है बचान जरे ना जो कौन तोंताक पना जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बच्चे सी जैसे गा ना ऐसी गाजे के चंगा ना ला स्कूल जी क्वेश्चन ना कॉलेज जी क्वेश्चन ना दोनों फिर पान फन तांचे जो सोशल वेलफेयर ही या गा ना ला स्किल्स सब चीज हुनर सब चीज सी फिर संग ज्ञान या मो ट्राइबल एरियो ना नु गान ज्ञान ला फिंग जैसे फिर चीज सं ला जोर को सानो दी ला जोन फिर कौन सी लास बन सो जिया दू गति री दोसे गति लद्दाख से संगी स्कीम पाना से की गडो लेने जो सोशल वेलफेयर थ्रू दी स्कीम पाना से गति ले कारगिल डिस्ट्रिक्ट कुना गना इंप्लीमेंट बने जिया दिवाने मो यहाँ चिक ट्राइबल ना जो कि गना सी स्कूल्स शिक्षा जैसे जो जनो ई एम आर एस स्कूल्स रे जुया इकलवा मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स रे सु जुया दिस स्कूल्स पो मती दोसे लद्दाख से अनुवा ना सी दोसे नोब्रा जो चिक गना सी नोब्रा गना सी प्रपोज बस जो निस कारगिल ना जो ये स्कूल्स इतन तक पुंस जो कि टुकपा नखे फॉर चुपत चोंगस तागी फ्रून ला चांग पेने मेट पा खोना बोर्डिंग रेजिडेंशियल स्कूल ता छ सितंता गन सुजु या गाव मति ट्राइबल एरिया न नु मति फ्रुन न नरी दे फ्रुन ला एजुकेशन बेस्ट सर्विस क्वालिटी एजुकेशन पर नियम यम खोना हुनर सब छ स्किल सब छ ताकि खो बेल स्कूल एन बी सुजु पा ची सन लाश मार्केट आनु बांग ने जिस छ तो ज्ञान यम या संगदांग सी ता फ्रुन दो से गदांग सी की गनाल पता जो दो से सुपर रिजल्ट चुंग से रिजल्ट फू था दो से ता कैरियर फिर आगे को चेफिया हों से साग से चेफिया अलग अलग ता सूला फाइनेंशियली पेनर गोजदम को चाजू मैं ना थारी ना गाती तुर्तु इलाको त्यासी गाती दो सो फो कारगिल हंदुरमाल गाती बल्ती गास जगह चाहिए खूँ दे फ्रू था गन लबी जो पता छी स्कॉलरशिप चिक थोबर गोज शेषिंगाना उन जनजू चेज बन स्कॉलरशिप जो थोड़ा होशियार चंद लगमो साथ से जरक दी फे संग ये ट्राइबल मिनिस्ट्री थ्रू मदान लगी का स्कॉलरशिप है युजू या इन जू दी स्कॉलरशिप का जंगा अलग अलग उस गोस स्कॉलरशिप युजू दी ना स्कॉलरशिप चिकला जरे जू मना से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जरे जू या गाने मो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जरे नोट गाओ गोपा ना छुपे फोन में थोबन जू या गाओ ना स्कूल एंड रूल ने दोनला देने पोस्ट मैट्रिक पो मना छुपे जुग नारी

यो न यम्बो बल्ती लजरी मेन्दो गे छरबु छम खुदा नर सामुरन यदंग न यंग थुक्खन यजुया खुदाए फगरिया।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: തഫീൻ ഇറങ്ങി പത്മയാങ്ടോൾ തങ് ടൊപ്പാഗുനി സൽക്കണി ഷർപ്രി ലുരിക് സനജത്സ് ങജി ആകാശവാണി ലേനി ചുഞ്ചിക് തങ് ഇൻ സനിച്ച സോത് ഉർഗ്യാത്തങ് സ്കർമാജിപ് ചുജാ ചതു കസത ആകാശവാണി ദില്ലിനി സമാചാർ സന്ധ്യ ന്യൂസ് എറ്റ് നൈൻ തങ് ഉദിന അനച്ചുൽഗുൻ സനജത്.
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम. भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत. दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया. उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया. पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा. मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया. और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी. अब समाचार विस्तार से. भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए. इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए. दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया. एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है. दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की. वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है.
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं.
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं. हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है. मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है. हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे.
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे. श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं.
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है. टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है. यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं. भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए.
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है. इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया. उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया.
2: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा, और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो, हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
5: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
4: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 विल प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल एंड फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल टाइज। ही सेड बोथ साइड्स आर वर्किंग टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग एन इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर एंड नोटेड दैट द इंडिया इटली डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप हैज ओपन्ड न्यू एवेन्यूज फॉर को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन इन द डिफेंस सेक्टर।
5: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स, मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
4: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
5: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं।

0: भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए.
1: Speaking on the occasion, Italian Prime Minister Meloni emphasized the importance of ensuring freedom of navigation in the Indo-Pacific and strengthening cooperation.

0: foolproof security arrangements to ensure a safe, secure and fair conduct of the upcoming NEET UG re-examination. Mr. Pradhan said this while chairing a high-level review meeting with Central Security and Intelligence Agencies in New Delhi today. The NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education will be held on the 21st of June. During the meeting, serious concerns were also raised over the growing spread of misinformation related to competitive examinations through anonymous online groups. Mr. Pradhan directed a focused crackdown on such networks, including proactive identification, blocking and taking down of channels spreading fake information. Meanwhile, a Delhi court has sent the five accused in the NEET paper leak case to judicial custody till the 2nd of next month. India is set to remain the world's fastest growing major economy as the United Nations, UN in its report, projected a growth rate of 6.4% this year for the country despite global uncertainty caused by the West Asia conflict. UN senior economist Ingo Peterle, briefing reporters on the media update on the World Economic Situation and Prospects report yesterday, said India's strong consumer demand, public investment and growth in services exports continue to support its economy. Director of UN's Economic Analysis and Policy Division, Shantanu Mukherjee, also noted that India's diversified energy sources, strong refining capacity, large foreign exchange reserves and fiscal flexibility could help cushion the impact of rising oil prices caused by tensions in the West Asia and disruptions in the Strait of Hormuz. Benchmark domestic equity indices ended with marginal gains today. We have a report.
1: Sensex rose by 118 points to close at 75,318, while Nifty added 41 points to settle at 23,659. Meanwhile, the broader market on the National Stock Exchange also ended in positive territory. The mid-cap 100 jumped 0.5%, while the small-cap 100 ended on a flat note with a positive bias. In the foreign exchange market today, the rupee depreciated by 30 paise to close at a record low of 96 rupees and 83 paise against the US dollar. Arjun Chowdhury for Akashwani News.
0: Meanwhile, the growth of the combined index of 8 core industries in the country rose to 1.7% in April this year on an annual basis, up from the revised 1.2% in March. The India Met Department, IMD, has issued a red alert for severe heatwave conditions over parts of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand till tomorrow. Meanwhile, severe heatwave gripped several parts of northern and central India, with the mercury breaching the 45 degree mark. In National Capital, an orange alert has been issued for heatwave conditions for the next 3 to 4 days. More from our correspondent.
2: According to the Met Department, the maximum temperature in Delhi is expected to be around 45 to 47 degrees Celsius tomorrow. In the past 24 hours, the maximum temperature in the National Capital was recorded at 44.5 degrees Celsius. With increase in the temperature, the Delhi government has mandated a compulsory rest period for all outdoor workers from 1 p.m. to 4 p.m. amid intensifying peak summer temperatures. With Shivang Mishra, Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
0: In IPL cricket, match between Mumbai Indians and host Kolkata Knight Riders is underway at the iconic Eden Gardens. Mumbai Indians were 57 for 4 in 8 overs when match was halted due to rain. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and elected to field. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas, including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's fastest growing major economy with 6.4% growth this year, despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between host Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at the Eden Gardens. And that's all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खुसूसी जामे शराकतदारी में बदलने से इत्तेफाक किया है। परिकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को फ़रोग़ देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। वज़ीर आज़म ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया की जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आइंदा 2-3 दिनों में शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल का रेड अलर्ट जारी किया है। और IPL क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच ईडन गार्डन्स में जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत और इटली ने आज मुख्तलिफ शोबों में 15 माहिदों को हतमी शक्ल दी। इन माहिदों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद आज रोम में दस्तखत किए गए। ये माहिदे दोतरफा ताल्लुकात के खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने की निशानदही करते हैं। दोनों फरीकों ने अहम मादनियात, दिफा, ज़िरात, आयुर्वेद, साइंस और टेक्नोलॉजी, बहरी ट्रांसपोर्ट और बंदरगाहों जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने की खातिर कई मफाहमत नामों पर भी दस्तखत किए। भारत और इटली टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तालमेल मजबूत करने पर भी मुत्तफिक हो गए हैं। बातचीत के बाद सहाफती बयान में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि फरीकैन ने दोतरफा ताल्लुकात को तकवीत देने के लिए काफी गौर व खौज किया है।
4: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
3: जनाब मोदी ने कहा कि भारत इटली मुश्तरका स्ट्रेटेजिक कार्रवाई जाती मंसूबा 2025-2029 दोतरफा ताल्लुकात के लिए अमली और मुस्तकबिल पर मबनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों फरीक भारत इटली इख्तराई मरकज के कयाम की जानिब काम कर रहे हैं और भारत इटली दिफाई सनती रोड मैप ने दिफाई शोबे में मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका तरक्की के नए इम्कान रोशन किए हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि भारत और इटली बहरी ताकतों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों की जदीदकारी, लॉजिस्टिक्स और नीलगु मईशत के शोबों में तआवुन को वसत देंगे।
4: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
3: जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली यूक्रेन, मगरबी एशिया और आलमी कशीदगी के दीगर मामलों पर लगातार रबते में रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि आगे का रास्ता मुजाकिरात और सिफारतकारी ही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखने के मामले में भारत और इटली मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी नेटवर्क की माली मावनत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
4: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
3: इक्तिसादी इश्तराक को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक भारत और इटली में डिजाइन और डेवलप करने और दुनिया को फराहम करने के नजरिए के साथ आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यह खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इकदार पर मबनी भारत इटली ताल्लुकात की बढ़ती गहराई की अक्कासी करती है। मोहतरमा मेलोनी ने भारत बहरुल काहल खित्ते में जहाज रानी की आज़ादी को यकीनी बनाने और कलीदी शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया।
5: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
3: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इटली के सदर सर्गियो मटरेला से भी मुलाकात की और तिजारत, टेक्नोलॉजी, साफ सुथरी तवानाई और सकाफत जैसे शोबों में दो तरफा साझेदारी को मजीद वसत देने पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के पांचवें और आखिरी मरहले के तहत कल इटली पहुंचे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन और नॉर्वे का अपना दौरा मुकम्मल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज इटली के रोम में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के सदर दफ्तर में बावकार एग्रीकोला एजाज से नवाजा गया। एजाज हासिल करने पर वज़ीर-ए-आज़म ने इस इनाम को भारत के लाखों किसानों, मवेशी पालने वालों, माहीगीर किसानों, ज़रई साइंसदानों और कारकुनों को मंसूब किया। ये इनाम FAO के डायरेक्टर जनरल कू डोंग यू की जानिब से पेश किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह एजाज खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार तरक्की और इंसानी फलाह व बहबूद के तई भारत के गैर मुतजलजल अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर दिया कि खुराक की यकीनी फराहमी महज पॉलिसी का मामला नहीं है बल्कि इंसानियत के तई जिम्मेदारी भी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत पायदार, मौसम के मुताबिक लचकदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार ज़रई इको निज़ाम तश्कील दे रहा है, जबकि मुल्क भर में साइंसी ज़राअत को मिशन मोड पर फ़रोग दिया जा रहा है। उन्होंने वाज़े किया कि टेक्नोलॉजी भारतीय ज़राअत की बड़ी ताकत बन रही है और ज़राअत का मुस्तकबिल सिर्फ ज़्यादा पैदावार में नहीं बल्कि बेहतर पैदावार में है।
4: आज हमारा देश एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही नहीं, एक ऐसा फार्मिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं जो सस्टेनेबल भी हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो और फ्यूचर रेडी भी हो। और इसलिए पूरे भारत में साइंटिफिक एग्रीकल्चर को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है।
3: एग्रीकोला एजाज FAO के डायरेक्टर जनरल की जानिब से दिया गया आला तरीन एजाज है। यह एजाज दुनिया में खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार ज़राअत, गरीबी कम करने और गजाइत की बेहतरी के ज़िमन में गैर मामूली और तवील मुद्दती ताउन करने वाले सरकर्दा आलमी रहनुमाओं और अफराद को दिया जाता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत जामे इक्तिसादी शराकतदारी के माहदे की मदद के साथ 100 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर गई है। नई दिल्ली में तकरीब के दौरान भारत में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर अब्दुल नासिर अल शाली ने कहा कि दोनों ममालिक ने साल 2032 तक बाहमी तिजारत का 200 अरब अमरीकी डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है। मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने तरमीम शुदा शहरियत के कानून या CAA के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क से बाहर निकालने की कार्रवाइयों को फौरी तौर से शुरू करने का ऐलान किया है। सरहद पर बाड़ लगाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जमीन सौंपने की एक तकरीब के दौरान नबन्ना के मकाम पर खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि अब दरअंदाजों को बराह रास्त BSF के हवाले किया जाएगा। यहां से उन्हें मुल्क बदर करने की गरज से BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इस नई कार्रवाई को पता लगाना, हजफ करना और मुल्क बदर करना करार दिया। वज़ीर आला ने कहा कि मरकजी वजारत दाखिला ने पिछले साल 14 मई को रहनुमा खतूत जारी किए हैं जिनमें रियासतों को हिदायत दी गई है कि वो दरअंदाजों की शनाख्त करें और उन्हें बीएसएफ के हवाले करें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि साबिका तृणमूल सरकार इन हिदायत को नाफिज करने में नाकाम रही। जनाब अधिकारी ने वाजे किया कि सीएए के तहत तहफ्फुज फराहम करदा सात बिरादरियों के अराकीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते कि वो 31 दिसंबर 2024 से कबल भारत में दाखिल हुए हों। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आने वाले नीट यूजी इम्तिहान के महफूज बेहतर तरीके से और शफाफ तौर पर दोबारा इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी और नकायद से पाक इंतजाम करने की जरूरत पर जोर दिया है। जनाब प्रधान ने यह बात आज नई दिल्ली में मरकजी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ एक आला सतह जायजा मीटिंग के सदारत करते हुए कही। अंडर ग्रेजुएट तिबी तालीम में दाखिले के लिए नीट यूजी का दोबारा इम्तिहान 21 जून को मुनाकिद किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस में 5 मुलजिमीन को अगले महीने की 2 तारीख तक अदालती तहवील में भेज दिया है। इन मुलजिमीन में मांगीलाल खाटिक, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे शामिल हैं। अदालत ने एक दिगर मुलजिम शुभम खैरनार की सीबीआई तहवील में तौसी कर दी है। सीबीआई ने अपने रिमांड पेपर में कहा है कि खैरनार की मजीद तफ्तीश की जरूरत है ताकि उन दिगर मुलजिमीन की पहचान की जा सके और पता लगाया जा सके जिन्हें खैरनार ने नीट यूजी 2026 इम्तिहान के सवालिया पर्चे बेचे थे। पर्चा लीक होने के इल्जाम के दरमियान पिछले महीने की 3 तारीख को लिया गया नीट यूजी 2026 इम्तिहान मनसूख कर दिया गया था। इस मामले में हुई बेजाबतगियों की जामे जांच की जिम्मेदारी का काम सीबीआई को सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस उजरदारी को खारिज कर दिया जिसमें आने वाली मरदमशुमारी के हिस्से के तौर पर जात पर मबनी मरदमशुमारी कराए जाने के मरकज के फैसले को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सरकार के पॉलिसी के दायरे में आता है। अदालत उज़्मा ने कहा कि सरकार ये जानना चाहती है कि पसमानदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद कितनी है ताकि उनके लिए फलाही इकदाम किए जा सकें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सियोल में जनूबी कोरिया के दिफाई हसूलियाबी के प्रोग्राम के इंतजामिया के वजीर ली योंग चुल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मीटिंग के दौरान फरीकैन ने मुश्तरका फरोग, मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका बरामदात के लिए बारावर कोशिशों को तेज करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के इख्तराई इको निज़ामों में तआवुन करने के काइंड एक्स पहल के इम्कान को तलाश करने के लिए लाहे अमल वजा करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मगरबी एशिया के तनाज़े की वजह से गैर यकीनी के आलमी सूरतहाल के बावजूद अकवाम मुत्तहदा ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा साल के लिए भारत की शरह तरक्की का अंदाज़ा 6.4% लगाया है जिससे भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी मईशत बना रहेगा। अकवाम मुत्तहदा के सीनियर माहिर माशियात इंगो पीटरले ने आलमी माशी सूरतहाल और इम्कान से मुतालिक वस्त साला रिपोर्ट से मुतालिक कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत की मजबूत घरेलू मांग, अवामी सरमायाकारी और बरामदाती खिदमात में इजाफे की बदौलत मईशत को मदद मिलती रहेगी। अक़वामे मुत्तहिदा के इक्तसादी जायजा और पॉलिसी डिवीजन के डायरेक्टर शांतनु मुखर्जी ने मुतनव्वे मईशत, ढांचा जाती असलाहत और बेहतर टैक्स महसूल को भारत की अहम ताकत करार दिया। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर जारी रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। तवक्को है कि इसी तरह की सूरतहाल कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी रहेगी। मौसमियात की एजेंसी ने गंगाई, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आइंदा 2 दिनों के लिए गर्म और मरतूब मौसम रहने की पेशगोई की है। भारत के महकमे मौसमियात ने कौमी राजधानी में आइंदा 3 से 4 दिनों में गर्मी की लहर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक शहर के किसी किसी मकाम पर दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल रहने की तवक्को है। आईपीएल क्रिकेट में ईडन गार्डन के तारीखी मैदान में मुंबई इंडियंस और मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मैच जारी है। आखिरी खबरें मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 10 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खसूसी जामे शराकत दारी में बदलने से इत्तेफाक कर लिया है। फरीकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को फ़रोग़ देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावक़ार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। वज़ीर आज़म ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया। मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरांदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: 제체 같은 체준 상말라 줄래.
1: 란지스 이안 테스티넷 소스페이스 캡스 징셰크 스탐파스 캡젤 갈타스 바쿨라린 포체초 콩이스 라다르시 치초라 초즈룩 툰델리 초르네 마 잡소스 간산 주아자테 스페이스 앙포직 보라자테 이녹 몰라자텐 직탕 안주마니 모닐 이슬람 레 티파 스쿠잡스 무함마드 샤피 라스위 소스파 숭샷 살라자텐 직탕 이즈욱 몰라자트
0: 그는 소나왕 추스콘들라마는 잉 딱파네 톡제 체제 림보체 스쿠샥스 텔팅 네팔라 कोन मा चार्लस रिम्बोची इतु बोर्चेज लमाने मता युलिना या छिगल फिलोक्का छमेना कोन मा चार्लस गांसान जस्ते वंगता संगमे छोज तुजे छेज रोसिर माने खपचाने रोसा जेजने मी वन मा मंगपे इतु लिस्ट मिरु आले सुई चार्लस जात जकन बो रिम्बोचे बकुले लीडरशिप पो इजुक तक पो जिक जुकस्ते दुकपिन विल न विजन एक विल वी था विजन उत्कन जिक कम नाम माने गिरजा माने मास्तो तेवी कठिन रुखसा मारा दिरला ची थोपते होत ना रिम्बो छे रोड मैप शिक्षा तो तेवी का दिरिंग माउस पिलाता इंडो या दिरिंग लीडरशिप इंडो तिन्ना भी छगले जाने ना ते लीडरशिप पो गता संग में पैसा चेस पो तेने गता संग में नींग तक पाने रिम्बो छे स्वा मुस्लिम के साथ साथ गता संग में कौन ला इतु चो को शिस्पो खचा ने रुखसा मारा तंगता कसुगी रिम्बो छे का रिम्बोचे छानबो नाम से बकुला बकुला जिर ना दुखते तो लेपचे नो लेपचेस मानो दसाई कम युअर पद्मावी उशन नता तो बोशेस नो लदास गंगपोआ थुंडेल छुजलुक थुंडेल मतंग संगमा चिक ना चिक नंगपा इंडो नंगपा खोरांग थुनते दुखचेस सामसिक मुस्लिम इन मुस्लिम थुनते दुखचेस लदास पकर छोज ल तेंका नीते संगमा थुनते दुखचेस पिया रिम्बोचे गोमे जक ने फल्ला सुकु शक्षा सक बनते उजातो ते बा सर्टिफिकेट पोंगाता थुंडेल टकपोदुक सरकार नु सुसल्स दलाई लामास कुंदुनी गता सल्स जिक्सिन गापे नाय जु मिसाल जि मन मिरुक जर्त मोल दो मिरुक
1: यांग इन्ना बो चोगला चोक्सपा सुंगशत सर जतिन जिक्तांग अंजुमनी इमामिया लेठीपा स्कुजब अशरावली बरसे इजुक मोलजात
2: रिम्बोचे सुंगा जत कानि नंगने रिम्बोचे तेव मोला जत तुस तुसिका कालोप सला जत यरग्यास तुस नन्याम पो छचे सिनो पर रिया मारिक पर रिया न्यूआरिक इन्ना तुसलाजर शेषेज में चक गिरजा नाम जिगों ते तुसपा डोंगलेन गतांग थंगमा चोगो से जुंग ना तेने गतांग चिक डिल बोमा खर्चान यो तेनो मोला रख शिको तो पास पेरा मा सिंटे सों जु तुसे गिरजाओ गतांग थंगमा न्यामयुंग छेन ना इनो तेने तेजा ने ता गतांग दक्षा जिक्सा नो थंगमा दे चिक डिल बो जाम जी खर्चान इनो उसकान बो तरुं तुसला चांग जर शेषेज में चक शिचुसे ची गिरजा रिगों तुसे ची गिरजा रिगों ते गुर्जा सामान अतां छोटमी छोटची कजुक्षी छेन मिछा इन नस क्या अतां संगमा चिकडिल जुक्ते चिनांग चिकडिल युलजोंस अतां चिकडिल बोलना चीसंग चीसंग कस्पो तुषी क्षरनं या कजुक्षी पोजिंग निस्के ना अतां मा थर खेल पालुशेस पो थक छेन पंग अतां रिम्बोचे कलोप्स कुन संशत कुनिकने अतां मोनिन ना क्यों नता ता दक्षां तेजा ने रिम्बोचे ने निस्तंडुस जाते अतां मा तुस स्क्यूमोयोत जाने ते तुस पिना गता मा स्क्यूमोयोत क्या इजुक ग्या छुनवे का संबा तांचे सी कास्पोयोत क्या गता ते जाने माने जचे थुंचे से तोरने मा उतुक्सोत क्या मीजिगा जचे थुंचे पुडंडा माचाना यंग संबा तांचे सी तमाने को मा कास्पोयोत छानो इन ना रिम्बोचे स्कुंदू ने ते तुस ना मयोंस पी लाख जोंचे चाने लाख से ते ना रिंगो जिग ना यहाँ पो थुक्साम सलते छागले जचेस पे दिरिंग ला से डुग डास पो गतां संग में दुन ला गोने ना नो चु ता यू स्तन पो कजु गतां चुन यू कजु गतां जिग मचु गतां योंचेस का नुला गतां स्तादिन यर्ग्यास छचेस नो ता यर्ग्यास पो फुंचुम चोस्पा जिग यर्ग्यास पो तुंतक चांजी का गतां किरोस यर्ग्यास यर्ग्यास जंग दे तस्तामे लगातां बंग दंस्ते ते यर्ग्यास से डुग डा पो सिंग ने मा चोपे बिंग ना तेने गतांग छमा ग्योदलुक छजे सिमाने चांग छछु
1: लंजस यांग टेस्टिंग ने सोर्स स्पेस कैप्स जिंगशेक्स अटम्पास कैप्स जे गल्टस बाकुला रिनपोचे चोर्सी मिस सचंगुनी स्टमजेक सी जचे सी स्मिकजी स्कोरला मोल जतिन जेक्तांग लदरसी माशिकापा चो सोर्सी टीपा स्कुजेप्स देचेन चमगे इजुक मोल जाज
3: ए मिस सचन या मि खासपा छोसी उस्कोंगने या ग्यापोंगने थुंगस्कार सिचेस पोदक्सेसंग माने लोस्टोंग निस थालिंगान ला तेनेंगातांग जमलिंग इनांगा यांग ग्यासि छनमो योटकान मुनी ग्यापोंगने थुंगस्कार सिचेस गोजुक दुगाले